0: हारु सान नो चिये बुकुरो।
1: अब हारु सान की जंबील का कॉर्नर। आज का मौजू है जापान में क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल।
2: हिरा, आप खरीदारी के लिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती हैं?
1: हाँ जी, अक्सर करती हूँ, क्योंकि इसे काफी आसानी रहती है। इसे जापान में अक्सर होटलों, रेस्टोरानों और स्टोरों में कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, और यकीनन ऑनलाइन शॉपिंग में भी। लेकिन बाज़ दुकानों में कार्ड इस्तेमाल ना किया जा सकने पर मुझे हैरत होती है।
2: वैसे तो जापान में अब क्रेडिट कार्ड और अदायगी के दीगर ज़राए का इस्तेमाल काफी आम है, लेकिन बाज़ जगहों पर, खुसूसन देही इलाकों वगैरह में, सिर्फ नकद रकम से अदायगी ही मुमकिन होती है।
1: गैर मुल्की सयाहों के लिए ये कोई खुश आइन सूरत हाल नहीं।
2: जी, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जापान में अब ऐसी दुकानों की तादाद बढ़ रही है जहाँ क्रेडिट कार्ड वगैरह के जरिए, यानी नकदी के बगैर अदायगी मुमकिन है। बाज़ ATM मशीनों से क्रेडिट कार्ड के जरिए जापानी करेंसी येन में नकद रकम भी निकलवाई जा सकती है। डाकखानों या कन्वीनियंस स्टोर्स में ATM आम हैं, और अक्सर में बैरून मुल्क जारी करदा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना मुमकिन है।
1: वैसे कहीं जाने से पेशतर ये चेक कर लेना बेहतर होगा कि कहाँ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है और कहाँ नहीं।
2: यकीनन, और बैरून मुल्क सफर की सूरत में कुछ नकद रकम तो लाजमन साथ रखनी ही चाहिए।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 7 जुलाई मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार। चीन ने पनडुब्बी से मिसाइल का प्रायोगिक प्रक्षेपण किया है, जिससे इस क्षेत्र के देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। चीन के अनुसार ये परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप था और संबंधित देशों को इसके कार्यक्रम की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। चीनी नौसेना के अनुसार उसकी पनडुब्बी ने सोमवार दोपहर को एक सामरिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया, जिस पर नकली विस्फोटक सामग्री लदी थी। नौसेना ने बताया कि ये मिसाइल योजनानुसार प्रशांत महासागर के अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में गिरी। नौसेना ने मिसाइल के गिरने की सटीक जगह का खुलासा नहीं किया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से संबद्ध समाचार पत्र द ग्लोबल टाइम्स ने अपने ऑनलाइन लेख में चीनी विशेषज्ञों के हवाले से कहा है कि परीक्षण में शायद जुलांग 3 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसे पिछले साल सितंबर में हुई सैन्य परेड में दिखाया गया था। लेख के अनुसार इसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से अधिक है, यानी इसके दायरे में दक्षिणी और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र आ सकते हैं। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कहना है कि 1982 के बाद ये चीनी नौसेना का पनडुब्बी से किया गया पहला ज्ञात मिसाइल परीक्षण है और परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी से किया गया ये अब तक का पहला परीक्षण है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग का कहना है कि ये परीक्षण एक नियमित सैन्य प्रशिक्षण था और इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट देश या लक्ष्य को निशाना बनाना नहीं था। उन्होंने कहा कि परीक्षण कार्यक्रम की सूचना संबंधित देशों को

ही दे दी गई थी और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून व अंतर्राष्ट्रीय तौर तरीकों के अनुरूप था। इसके बावजूद इस परीक्षण ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। प्रमुख अमेरिकी समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने मंगलवार को होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट दो व्यावसायिक जहाज़ों पर मिसाइलें दागी। अखबार ने एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि इनमें से एक जहाज़ कतर की एक कंपनी के स्वामित्व वाला LNG गैस टैंकर प्रतीत होता है। इससे पहले ब्रिटेन के समुद्री व्यापार संचालन यानी UKMTO ने बताया था कि उसे होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट ओमान के तट के पास एक टैंकर पर अज्ञात वस्तु से हमला होने और टैंकर में आग लगने की सूचना मिली है, हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। 25 जून को भी जलडमरू मध्य के निकट एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ था, जिसके बाद 27 जून को एक अन्य टैंकर पर हमला हुआ था। ये हमले अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्ति से जुड़े समझौता ज्ञापन के प्रभावी होने के बाद हुए। उस समय अमेरिकी सेना ने बताया था कि जहाज़ों पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया, जिसके जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान में रडार स्थलों, ड्रोन भंडारण सुविधाओं और अन्य ठिकानों पर हमले किए। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम उल्लंघन के आरोप लगाए थे। जापान स्थित उक्रेनी वाणिज्य मंडल ने जापान को नागरिक उपयोग के लिए उक्रेन की नवीनतम ड्रोन तकनीक उपलब्ध कराने से जुड़ी एक सहयोगात्मक व्यवस्था की नींव रखी है। गौरतलब है कि उक्रेनी वाणिज्य मंडल की स्थापना जापान में रह रहे उक्रेनी नागरिकों और अन्य लोगों ने की थी। जापान उक्रेन ड्रोन क्लस्टर नामक इस व्यवस्था के लिए सोमवार को टोक्यो में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। लगातार जारी रूसी आक्रमण के बीच उक्रेन ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे ड्रोन खराब संचार परिस्थितियों और सीमित GPS कनेक्टिविटी में भी काम कर पाते हैं। माना जाता है कि जापान में आपदा राहत व लॉजिस्टिक सेवाओं में ये तकनीक उपयोगी साबित हो सकती है। क्लस्टर व्यवस्था का उद्देश्य दोनों देशों की संबंधित कंपनियों को आपस में जोड़ना है। मंडल के अनुसार 4 जापानी कंपनियां इसमें भाग लेने के लिए पहले से तैयार हैं।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने तोरी फुने गृहिका की छवियां जारी की हैं, जिसे एक खोजीयान ने पास से गुजरते समय ली थी। हयाबुसा 2 खोजीयान जापान समयानुसार रविवार शाम 6:30 बजे पृथ्वी से लगभग 10 करोड़ किलोमीटर दूर इस गृहिका के पास से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गुजरा। जापान अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी जाक्सा ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में ये छवियां दिखाईं। हयाबुसा 2 की तोरीफुने गृहिका के सबसे करीब आने से 1 सेकंड पहले एक तस्वीर ली, जिसमें स्नोमैन आकृति की गृहिका और उसकी सतह पर कई चट्टानें देखी जा सकती हैं। जाक्सा ने सतह के तापमान को मापने में सक्षम कैमरे सहित अन्य उपकरणों की मदद से गृहिका का अवलोकन करने में भी सफलता प्राप्त की। एजेंसी का कहना है कि वो खोजीयान से प्राप्त सभी डाटा को पृथ्वी पर भेजेगी। रियुग्यू गृहिका से प्राप्त रेत और अन्य नमूनों वाले कैप्सूल को 2020 में पृथ्वी पर भेजने के बाद हयाबुसा 2 का यह विस्तारित मिशन शुरू हुआ था, जिसके अंतर्गत उसे तोरीफुने गृहिका के पास से गुजरना था। इस यान का अंतिम लक्ष्य 2031 में एक अन्य गृहिका पर पहुंचना है। जापान में मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या पहली बार 10 लाख से नीचे आ गई है, जो किसानों की बढ़ती उम्र दर्शाती है। कृषि वानिकी एवं मत्स्य मंत्रालय ने एक सर्वेक्षण जारी किया, जिसके अनुसार इस वर्ष फरवरी में मुख्य रूप से खेती का काम करने वाले लोगों की संख्या 9,86,600 थी। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 4.8% की गिरावट आई है और 1985 में तुलनात्मक डाटा उपलब्ध होने के बाद से पहली बार ये आंकड़ा 10 लाख से कम है। 2010 में ऐसे लोगों की संख्या 20 लाख से अधिक थी और तब से ये संख्या 50% से भी कम हो गई है। आयु वर्ग के हिसाब से 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसानों का अनुपात 35.3% था, उसके बाद 70 से 74 वर्ष की आयु का 21.2% और 65 से 69 वर्ष की आयु के किसानों का अनुपात 13.7% था। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि किसानों की संख्या में गिरावट का रुझान जारी रहेगा, क्योंकि उनमें से कई बुजुर्ग हैं। उनका ये भी कहना है कि जापान की कृषि उत्पादन क्षमता में गिरावट को रोकने के प्रयास में वे कृषि भूमि को मिलाकर उसके पैमाने का विस्तार करने तथा कुशलता में सुधार करने के प्रयासों में सहायता करना चाहते हैं।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।